0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क
2: लोकलहरी
3: उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा यो हो लोकलहरी
2: लोकलहरी।